0: FM 101.9.
1: Hello, hi. Oh, Sasi Timi kata ideko.
2: Hi. Mau aja kaya aku dress sabini ko.
1: Kina, keke pancerat ya ha?
2: Ya, to sport tata school ka saman haru. Sabe ekit hawa pahin cha. Bazar bazar dulu nih pahar deh na. Samay ko pani baca tuh cha.
3: Hamra sewa haru. School college tata saisik sang sasta haru ko dress pahinu ka sathi. Vidyarthi haru ko stationery saman haru sufat mulle ma pahin cha. Nursery dekhi college samma ka vidyarthi haru lai chahine sampurna saman ekit hawa gaida ko dress up ma.
4: सम्पर्क गैंडाकोट ड्रेस अप गैंडाकोट आर्ट कांग्रेस चोकबाट 200 मिटर पश्चिम ढुंगाना भवन प्रोप्राइटर सुनिता आचार्य ढुंगाना र दीपक ढुंगाना मोबाइल नम्बर 9846545090 र 9855530
5: विजय टाञ्चे
4: विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदायी बास र मीठो खाना का लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 9862124437
6: अहिले बिहानको 6 बज्यो

गैडाकोट 4 दर्शन चौक प्रोप्राइटर विश्व प्रकाश घिमिरे मोबाइल 98450661189 र 98071638139।

0: दशमलव 6। विजय विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदै बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क, गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि, गैंडाकोट 5, मोबाइल 98612204437।
1: अहिले रातिको 8 बज्यो।